और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया हरगिज ये वहम ना करें कि वो सबकत ले गए हैं, वो हरगिज आजिज नहीं कर सकेंगे।